0: defending the nation. Manaslu World College, a home for future leaders. Sabahil, Kathmandu.
1: ए 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया
2: आओ ऐसे तो बच्चा हराई कुछ समझे जरा 7 वर्ष का बालक यहां रहे कुछ कृपया संपर्क
3: यही फागुन 14 गते महाशिवरात्रि को दिन तपाईहरु को नजिकको सिनेमा घरमा नेपाली कथानक चलचित्र लाज शरणम